Tayi tagi chu zhongqir nangkhi ki zhongu tang lakpar tada zhongqir nangkhin dani hanzhu sanay yungu nu da langkur kalwa tang lam zhuo so so gara ta nangkhin dani jo na ta kshik ni da gog ni ni nyam jo gog namshi jim gog tata hachang gachin di o ta ti hanchik tagi chu nchirta kuun khin suan jina ra ta rang rang ga denjik te sem chung yi chik ni denjik ka kar ga mugja kuun ju nigi la khani ओशान दन जोन तामु इ चुत ता लाला इन दन छता कुन के नन छता गजु आ ता जि आ त खुरा त वजि तिंग आ डारा त सिक साउ आ डा टको जक न जंगु त जंगु जि तंग दा शालम त ता खजा प जें जो का ता नम नम त नि होंग ख जि वा कम नानी ओ ता होंग म जुको न त मुग न सलोक ति ताब ग द तर क नम इन नर तोंद ख शों का सान न जर तोंद ख शों ग रे वक त्यान छि त लंकुर खलो सोनारा ता छु ᱛᱚᱱᱪᱟᱨ ᱱᱟᱝᱠᱷᱱᱟᱣᱛᱤᱛᱟ ᱱᱟᱢᱨᱤᱜ ᱫᱚᱛᱟ ᱱᱤᱯᱨ ᱫᱟ ᱡᱤᱢᱜᱚ ᱜᱚᱛᱟ ᱱᱟᱢᱨᱤᱜ ᱫᱮᱢᱤ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱭᱟᱱᱨᱚ ᱢᱟᱨᱚᱝ ᱥᱮᱡᱤᱱᱟᱱᱫᱟ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱪᱟᱨᱠᱟ ᱪᱩᱜ ᱢᱮᱱᱡᱚᱱᱟ ᱢᱚᱡᱩᱠᱤᱱ ᱴᱷᱮᱞᱢᱨᱛᱟᱱ ᱭᱟᱨᱢᱟᱱ ᱡᱚᱜᱩᱱ ᱨᱮᱴᱟᱨᱟ ᱤᱱᱱᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱞᱚᱞᱩᱱ ᱥᱮᱡᱤ ᱥᱟᱭᱤ ᱥᱮᱡᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱤᱜ ᱢᱟᱵᱤᱡᱤᱜ ᱠᱮ ᱪᱟᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱱᱟᱞᱟᱜ ᱛᱚᱦᱱᱟ ᱤᱢᱟᱭᱤᱜ ᱪᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱚᱛᱟ ᱧᱮᱡᱤᱱ ᱴᱷᱮᱞᱢ ᱤᱱ ᱢᱟᱭᱤᱱᱤ ᱦᱟᱨᱠᱟ ᱥᱟᱨᱠᱟᱱ ᱡᱚᱜᱩᱱ ᱦᱟᱨᱠᱟ ᱥᱟᱨᱠᱟ ᱜᱟᱞᱠᱚᱱᱚ ᱟᱱ ᱫᱚᱢᱩᱜ ᱱᱟᱛᱩᱱᱫᱟ ᱱᱚᱢᱩᱜ ᱱᱟᱱᱥᱤᱴᱟ ᱠᱟᱢᱟᱥᱩᱠ ᱚᱛᱤ ᱛᱟᱯᱠᱟᱛᱟ ᱚᱛᱟᱨ ᱠᱟᱨᱟᱨᱟᱱ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱟᱡᱟᱨᱡᱩᱵ ᱥᱮᱠᱚᱜᱟ ᱟᱨᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱢᱪᱚᱱ ᱥᱮᱠᱚᱜᱟ ᱥᱮᱢᱪᱚᱱ ᱢᱟᱭᱤᱱᱟᱛᱟ ᱚ ᱛᱤᱥ ᱠᱚᱨᱱᱤᱨᱟ ᱟᱛᱟ ᱫᱚᱱᱫᱚᱜ ᱪᱟᱜᱤ ᱥᱮᱜᱤ ᱥᱚᱝᱜᱚᱱᱚ ᱠᱟᱢᱚᱱᱥᱩᱠ ᱚ ᱛᱤᱥ ᱛᱟᱵᱠᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱟᱪᱤ ᱠᱟᱞᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝᱡᱟᱪᱤ ᱞᱟᱢᱨᱚ ᱥᱩᱥᱩᱜ ᱱᱟᱢ ᱤᱱᱱᱟᱨᱟ ᱱᱮᱢᱡᱚ ᱫᱮᱱᱡᱚᱱᱮ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱥᱮᱜᱟᱨ ᱜᱟᱡᱜᱤ ᱪᱩᱛᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱠᱟᱪᱤᱠ